0: sorry.
1: Darling, darling, दिल क्यों तोड़ा? कीजिए मोहब्बत का शरबत थोड़ा थोड़ा. आओ भैया, आओ भैया. बाबा चश्मा लगाए, हर जगह भगवान नजर आए. जब भी बिजली जाए, मिनी बुलडोजर पंखा चलाए. आए आए आए, गर्मी का इलाज पाए पाए पाए. दस रुपए निकालो, दस रुपए पी लो गन्ने का रस, मिलेगी ठंडक, नहीं रहोगे बेबस. आयो भाई साहब, आइसक्रीम, ठंडी आइसक्रीम. लिट्टी चोखा का फ्लेवर है इस आइसक्रीम में, बड़ा फ्लेवर है.
2: भवानीपुर का कुल्फी सबसे ठंडा. ठंडा कुल्फी खाइए और गम भूल जाइए.
3: वोकल बनिए वोकल, गर्मी दूर भगाए गमछा या लोकल, गमछा घुमाओ.

0: Discover your new favorites on TuneIn. With over 100,000 music, news, and sports stations to choose from, there's always something to listen to. Even podcasts and audiobooks for you to enjoy. Stay connected for all new recommendations and follow us on social media at TuneIn on Facebook, Instagram, and X. And start listening today. Just ask your device to play TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: उन्होंने डिजिटल इंडिया को विरोध किया, भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ तो नहीं है। मैं जब खुद इस विसंगति का, इस अव्यवस्था का सरकार की ओर से दायित्व लेता हूं और उनको अनुरोध करता हूं, उनकी कोई भी बयान इस समय में, मैं पहले भी कभी कहा था कि ये राजनीति की समय नहीं है, राजनीति कर सकते हम लोग। अभी इन बच्चों को, जो परीक्षार्थी बच्चों को, उनकी कोई मेंटल स्ट्रेस ना बढ़े, इससे बड़ी हुई है ना बढ़े, हम किसी की व्यवहार से, किसी के शब्दों में, ये हम सबको अपील करते हैं। आज हमने जो CBSE की 12th की जो एग्जामिनेशन लेके कुछ विषय सामने आई है, उसकी एक रिवैल्यूएशन अभी शुरू होगा। लगभग 40 करोड़ स्कैन कॉपी, जिसके ऊपर पहली बार CBSE ने एक इवैल्यूएशन प्रोसेस किया, OSM उसको कहा, पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको ऐसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा, उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं, इसमें अनेक सुधार होने की संभावना भी है। उसमें जो कुछ विसंगति आई, जो दिक्कत आई है, उसके लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं।
4: On Karnataka's biggest news story of 2026.
5: So yeah, DK Shivkumar is right here.
4: Only one channel got the inside track right.
5: My sources do confirm this has been discussed very seriously, the leadership issue.
4: Exit Siddaramaiah, enter Shivkumar.
6: At this point, reportedly Siddaramaiah is not okay with that.
7: It was quite clear that Rahul Gandhi was trying to convince Siddaramaiah and he wanted a smooth transition.
4: Others speculated, we substantiated.
8: Our sources now reconfirming that Mr. Siddaramaiah will resign as Karnataka's chief minister.
9: Bureaucracy is the first one that I believe.
10: You're already getting a sense of the mood in the air, right? Yes. The winds of change, yes. They're smelting.
9: DK Shivkumar will be the next chief minister of Karnataka till 2028 May. That is the next assembly election.
4: The gold standard of political coverage. India Today keeps you ahead as always.
11: Co-powered by
12: the new Tygoon. Welcome to driving.
11: Mutual funds sahi hai.
12: Jio Home. Jio to aise.
13: LIC har pal aapke saath.

0: मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: इफ यू वॉन्ट टू स्केल द मीडिया हाइट्स, वी विल टीच यू द रोप्स। देयर इज नो पीक इन जर्नलिज्म दैट आवर मेंटर्स हैवंट स्केल्ड, सो लुक नो फर्दर। जॉइन आवर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स एंड गेन guaranteed internship and proven placement record with top media houses and companies. For more information, visit indiatodaymediainstitute.in or call 95600-65465.

0: But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: वो भी हर महीने
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ
3: सोच बदलो और बैंक भी
4: द एक्शन नेवर स्टॉप्स एंड नीदर डू वी फ्रॉम ब्रेकिंग अपडेट्स टू मैच एनालिसिस फ्रॉम बिग मोमेंट्स टू बिगर कॉन्वर्सेशन दिस इज वेयर स्पोर्ट्स कम्स अलाइव फास्ट शार्प अनफिल्टर्ड फॉर द फैंस हु वांट एवरी अपडेट एवरी स्टोरी एवरी हेडलाइन फर्स्ट वेलकम टू स्पोर्ट्स टुडे योर डेस्टिनेशन for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.

0: Sorry.
1: Hoya! Darling, darling, dil kyun toda? Pijiye mohabbat ka sharbat thoda thoda. Aao bhaiya, aao bhaiya. Baba chashma lagaye. हर जगह भगवान नजर आए, जब भी बिजली जाए मिनी बुलडोजर पंखा चलाए, आए आए आए गर्मी का इलाज पाए पाए पाए।
2: ₹10 निकालो, ₹10 पी लो गन्ने का रस, मिलेगी ठंडक, नहीं रहोगे बेबस। आयो भाई साहब, आइसक्रीम ठंडी ठंडी आइसक्रीम, लिट्टी चोखा का फ्लेवर है इस आइसक्रीम में, बड़ा फ्लेवर है। आइए आइए आइए आइए।
3: हम्बा हम्बा हम्बा, रम्बा रम्बा रम्बा, भवानीपुर के कुल्फी सबसे ठंडा।
4: वोकल बनिए वोकल, गर्मी दूर भगाए गमछा या लोकल, गमछा घुमाओ गर्मी।

0: our legal correspondent, Srishti Ojha, for the latest on that. Srishti, tell us more how the Supreme Court has not just expressed dismay about what has happened, that parents and students have done. How is the Supreme Court asking for accountability in this case?
1: Well, Pooja, the Supreme Court clearly today posed very pertinent questions to both the central government and also the NTA with regard to the incident that recently occurred as far as the NEET UG paper leak is concerned, stressing on the fact that this is not the first time an incident of this nature has happened. As far as exams are concerned, exams which concern lakhs of students and their lives and their careers are concerned. Now, the important update is that the court today has specifically asked the Union of India to ensure that they file an affidavit regarding the manner in which these exams are conducted and concluded year after year. What's the manner, what's the process that they're following? They've specifically asked the affidavit to indicate what mechanism are they bringing in for ensuring that there's continuity of research, that experts are specialized personnel and experts are also deployed to monitor the situation, to monitor the conduct of these exams. Now, the court has also clarified that the endeavor, when they ask Union to file this affidavit or while they're hearing these cases, the endeavor is to ensure that incidents like those that happened this year and earlier back in 2020 and 24 do not happen again. Important observations also made during the hearing where the court stressed on the fact that when we're talking about NEET UG exams, there's investment of so many emotions, years of studying, because lakhs of students put in their effort, study for years, and then they appear in these examinations. Now, court also stressed on the fact that if we talk about institutions in this country, the problem in most of our institutions is the fact that there might be good officers, but once they retire, the knowledge that they have do not percolate. They stressed on the importance of institution having the capability and not just individuals. We saw the Solicitor General telling the court that the Prime Minister himself is monitoring the situation, is supervising the situation. And the court says that it is a very sensitive situation indeed. And the court has also highlighted that it's very important to also identify who is responsible, not just as an institution, but also the individual persons who are responsible, despite there being a monitoring committee, despite the NTA.
0: You're right, because what the court has said is very important, because we can keep talking about this happened, there was a leak, students are suffering, parents have to again cope up with where the centres are. But the fact is, who's accountable? Who's going to be punished in a manner that you will not have such leaks and such cases yet again? And that perhaps is where the court has jumped in rightly. And we hope that there is a conclusion to this and never a repetition of such a scandal. Appreciate you joining us, Srishti. Here's what the lawyer is saying on this case.
2: तो आज की हियरिंग काफी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि उसमें एनटीए ने एक एफिडेविट भी फाइल करा कल रात में जो हमें भी सर्व हुआ और जो चेयरपर्सन थे कमेटी के जो कमेटी पिछले वंशिका यादव के जजमेंट में जब 2024 में पेपर लीक हुआ था उसके बाद भी एक कमेटी का गठन किया गया था उस कमेटी के चेयरपर्सन खुद आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे डॉक्टर राधाकृष्णा जो कि फॉर्मर इसरो चेयरपर्सन है वो खुद भी मौजूद थे कोर्ट में उनकी तरफ से जो एफिडेविट फाइल था वो भी ऑन रिकॉर्ड था कोर्ट में तो काफी डिटेल चर्चा हुई उन एफिडेविट्स में क्या एनटीए का स्टैंड था और क्या एसओपीज और कैसे गाइडलाइंस फॉलो करी गई हैं तो पहला क्वेश्चन ये सुप्रीम कोर्ट का ये था कि ऐसे कौन सी गाइडलाइंस हैं जो कि फॉलो नहीं करी गई जिसकी वजह से 2026 में फिर से पेपर लीक का मामला सामने आया और उसका रिप्लाई देते हुए उन्होंने ये बोला कि हमने जितने स्टेप्स हैं वो एफिडेविट में मौजूद करें लिखे हैं कि जो जो फॉलो हुआ है ऑल्दो उस पर कोई भी आंसर नहीं दिया गया कि इस बार क्या फॉलो नहीं हुआ है उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी है कि क्योंकि ये 2024 में हुआ फिर 2026 में हुआ इसलिए अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं तो बार बार ये इस तरह के सिस्टमिक फेलियर्स होना विजिबल है और इसीलिए उन्होंने आज बोला कि अकाउंटेबिलिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जब हियरिंग चल रही थी तब जो यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से सॉलिसिटर जनरल वॉज अपियरिंग तो सॉलिसिटर जनरल ने स्टेटमेंट दिया कि हमें बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने भी कंसर्न बताई है और पीएम खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं इस एंटायर जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है उस पूरी प्रक्रिया को पूरी प्रोसेस को पीएम खुद मॉनिटर कर रहे हैं
0: Let's listen in now to what the Education Minister Dharmendra Pradhan is saying. Here's an excerpt from the interview.
3: देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हमारे साथ हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी मैं कह सकती हूं कि इस समय जो शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा मंत्रालय है उसकी सबसे बड़ी परीक्षा चल रही है नीट जो री एग्जाम होना है उसके लिए कैसी तैयारियां हैं आप लोगों की, किस तरह के आप लोग बंदोबस्त कर रहे हैं कि जो पिछले महीने हुआ वो दोबारा ना हो?
4: पिछले महीना जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो नहीं होनी चाहिए थी। हमारी चिंता बच्चों की मानसिक स्थिति के साथ जुड़ा हुआ है और हम जिम्मेदारी लेते हैं। तब भी मैंने कहा था पिछले बार जब मैंने आप लोगों को मिला था और कहा था कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, और हम जिम्मेदारी लेते हैं परीक्षा को निर्भुल करने के लिए। 21 जून को री नीट की तिथि तय हुई है। पिछले दिनों में भी नीट की एक प्रोटोकॉल है कैसे ये परीक्षा होगी, इसमें इस बार और मजबूती और स्पष्टता और सुरक्षा की व्यवस्था लाने की आवश्यकता है। इस सारे प्रबंधन के बाद इस बार जो घटना हुई या आगे कैसे ना हो उसकी जिम्मेवारी हम सभी के ऊपर है। हम पूरा सरकार की सभी घटक मिलकर होल ऑफ द गवर्नमेंट के एक अप्रोच से ये शुरू से नई अप्रोच कैसे प्रश्न पत्र तैयारी करने से लेकर परीक्षा होने तक और परीक्षा होने के बाद प्रश्न पत्र कैसे सुरक्षित केंद्र में लौट के आए, इस सारे के एक फुल प्रूफ व्यवस्था किया जा रहा है। राज्य सरकारों की मदद लिया जा रहा है, इसकी कोऑर्डिनेशन जिला स्तर तक होगी। स्टूडेंट सेंट्रिक एग्जामिनेशन हो इसलिए हमने दायित्व लिया था कि बच्चों को थोड़ा तनाव मुक्त करने के लिए, बोझ मुक्त करने के लिए हमने पिछले बार की जो फीस था, जो परीक्षा कैंसिल हुई उसकी फीस हम लौटाएंगे, जो अभी की परीक्षा होगा उसको फीस माफ करेंगे, फीस नहीं लेंगे। और बच्चों को हमने अवसर दिया था अगर वो अपना चॉइस बदलना चाहते हैं सेंटर, वो भी हमने बच्चों को दिया। लगभग अच्छे खासा 2.5-3 लाख बच्चे अपना सेंटर को भी बदले हैं, उसको भी हमने अकोमोडेट किया। एक राज्य सरकारों का मदद लेके जो 5,400 केंद्र होगा ये कैसे सुरक्षित हो, सरकारी संस्थानों में हो, उसकी प्रोटोकॉल पूरा हो, उसकी SOP पूरा हो, उसकी सारे जिम्मेवारी उसके हम लोग के पूरे अमूल चूल उसकी फिर नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं।
3: जिस पैमाने पर आप लोग तैयारियां कर रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि PMO की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हमारी नजर रहेगी इस पर, मतलब देश के आपके बाकी जो कैबिनेट के सहयोगी हैं वो सब राजनाथ जी के साथ बैठकें हो रही हैं, तो यानी कि पूरा तंत्र इस समय लग गया है कि देश का भविष्य।
4: हमने कहा ना कि हम होल ऑफ गवर्नमेंट में, आप सरकार की कोई विभाग का दायित्व हो सकता है लेकिन दायित्व तो सभी के ऊपर है, इसलिए सरकार की पूरा नेतृत्व स्वयं हमारे प्रधानमंत्री हमारे नेता है, उनकी निश्चित जानकारी में सभी चीज को किया जा रहा है।

0: CM has given resignation to the governor's office. Though governor was not there, he has given the resignation. The next CM will be elected.
1: No pressure at all.
0: Well, he already has clarified that whatever he the high command told, and he has followed the high command direction.
2: Karnataka ke log aur desh ke logon ko ek message Congress party ne diya ki vichardhara ka koi mahatv nahi hai, mudra ka bahut mahatv hai. जो हाईएस्ट बिडर होता है उसके नाम का टेंडर खुल जाता है, तो हो सकता है कर्नाटक की सरकार की भी बिडिंग हुई हो, हाईएस्ट बिडर किसी का आ गया हो, सिद्धरमैया जी की बिडिंग H1 नहीं क्वालिफाई कर पाए तो सिद्धरमैया जी को घर भेज दिया.
3: Meanwhile, what is Siddaramaiah up to? As he's set to become the former chief minister, or for now the caretaker chief minister, he's had a share of meetings with Rahul Gandhi, Mallikarjun Khadge, KC Venugopal and DK Shivkumar as well. Now, amid all of this, of course, remember the focus will also be on Siddaramaiah. Do not think for a minute that he may not be the chief minister anymore and he's out from the whole political corridor when it comes to power position. It was lunch diplomacy after breakfast meeting in Delhi. Siddaramaiah and DK Shivkumar were seen having lunch together in Delhi. Former Karnataka Minister K.H. Muniyappa also was present at the lunch meeting. Sources adding, Siddaramaiah handed over a letter to Rahul Gandhi with some key demands. What could be that? The list contained names for Rajya Sabha and MLCs. Sources say Siddaramaiah also demanded portfolios to his son Yatindra, including plum posts like medical education, backward class industries or water resources ministry. Karnataka Congress in charge Randeep Surjewala said the meeting between Siddaramaiah and Rahul Gandhi was fruitful and that the new CM transition will be smooth. On question about Siddaramaiah's national role, Surjewala said things will be known in coming days. The Congress sees Siddaramaiah as one of its strongest OBC faces nationally, a mass leader with deep grassroots connect and the political face of Karnataka's caste census push, now central to Rahul Gandhi's campaign too.
4: Siddaramaiah ji, आज राहुल जी से मिले. इट वॉज ए वेरी प्लेजेंट मीटिंग एंड दे डिस्कस मल्टीपल पॉलिटिकल इश्यूज. आई डोंट हैव एनीथिंग टू से फर्दर. थैंक यू
5: सर. इज ही रेडी टू कम टू दिल्ली इज द क्वेश्चन. इज ही कन्विंस अबाउट दैट?
4: वी विल टेल यू इन डेज टू कम.
5: सो इज इट गोइंग टू बी अ स्मूथ ट्रांजिशन?
4: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली.
5: देयर इज नो हर्डल,
4: नो हर्डल और हिकअप.
6: मैं तो ये बोल दिया हूँ, सीएम साहब आ रहे हैं. सिद्धरामैया जी, डीकेश कुमार जी दिल्ली आ रहा है, आपके साथ उसका बातचीत करेंगे. इसके बाद जो भी उनका उधर निर्णय होगा वो मानेंगे, देख लेंगे क्या होता है. पता नहीं, अभी सीएम साहब आ रहे हैं वापस. आने के बाद उनके साथ चर्चा करेंगे क्या दिल्ली में बात हुआ है सोनिया जी और राहुल जी से, केसी से. सो उसके बाद निर्णय ले लेंगे.
7: सर, आपसे कोई चर्चा हुई है के साथ कैबिनेट क्या कहा गया है? आप उसके लिए भी एस्पिरेंट हैं?
6: नहीं नहीं, मैं तो एस्पिरेंट नहीं हूँ. अभी चर्चा तो नहीं शुरू हुआ है. जब चर्चा होगा तो उसके बारे में हमारा राय क्या है, व्यू क्या है बताएंगे.
8: सर, आपका डिमांड क्या है सर अभी पार्टी से? मतलब केपीसीसी प्रेसिडेंट ही चाहिए आपको की मिनिस्ट्री भी चाहिए उसके साथ? सर, आपका अगर पूछा जाए तो क्या डिमांड?
6: नहीं, अभी जो सिद्धरामैया जी डीकेश कुमार जो डिस्कस करके वापस आएंगे उसके ऊपर निर्णय ले लेंगे.
3: I take you now to the state of Bengal. There are disturbing scenes coming in. A TMC local leader, who's a councillor, was stripped and beaten on the road on camera. There have been similar instances that have come, that, and the charges are of extortion against these leaders, that they have been charging money. And finally, there is this vengeful attitude that is coming in from the locals on the ground. There was Birbhum, Cooch Behar and several other areas. Here's a report on what we are witnessing in Bengal.
9: তিয়াত্তর নম্বর বুথের যে সমস্ত কাটমানির টাকা আবাস যোজনার কাটমানির টাকা দিয়েছিল সেই সমস্ত কাটমানির টাকা.
10: They looted, ill-treated and suppressed the public during Mamta's rule. And now they're paying the price. With Mamta out of power, her party netas are now facing action from the police and the wrath of the people because of their deeds. In Birbhum, a TMC neta and a local councillor, Bhaskar, was stripped and beaten with slippers by locals over allegations of extortion. He allegedly took rupees 30,000 as cut money from people while the TMC was in power. Once abroad.

राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं, निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। उन्होंने SIR को विरोध किया है, उन्होंने EVM को विरोध करते थे, उन्होंने डिजिटल इंडिया को विरोध किया। भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ तो नहीं है। मैं जब खुद इस विसंगति का, इस अव्यवस्था का सरकार की ओर से दायित्व लेता हूं और उनको अनुरोध करता हूं, उनकी कोई भी बयान इस समय में, मैं पहले भी कभी कहा था कि ये राजनीति की समय नहीं है, राजनीति कर सकते हम लोग। अभी इन बच्चों को, जो परीक्षार्थी बच्चों को, उनकी कोई मेंटल स्ट्रेस ना बढ़े, इससे बड़ी हुई है ना बढ़े। हम किसी की व्यवहार से, किसी के शब्दों में ये हम सबको अपील करते हैं। आज हमने जो CBSE की 12th की जो एग्जामिनेशन लेके कुछ विषय सामने आई है, उसकी एक रिवैल्यूएशन अभी शुरू होगा। लगभग 40 करोड़ स्कैन कॉपी, जिसके ऊपर पहली बार CBSE ने एक इवैल्यूएशन प्रोसेस किया, OSM उसको कहा, पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया। उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा, उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं। इसमें अनेक सुधार होने की संभावना भी है। उसमें जो कुछ विसंगति आई, जो दिक्कत आई है, उसके लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं।

0: A moment that perfectly captured the goofy, unscripted charm that has now become her signature online persona. On the work front, Shraddha was last seen in the blockbuster horror comedy Stree 2, which emerged as a major box office success.
1: आपको पता है कि सब लोग आपके पीछे से आपको क्या-क्या बोलते हैं? छलावा, चुड़ैल, पिशाचिनी, सोनम बेवफा, ठुकरा दिया तेरा प्यार, अब इंतकाम देखेगी। हमारे भाई में क्या बोलते हैं पता है?
2: क्या?
1: चंदेरी का देवदास, बर्बाद आशिक, बिक्की बावरा, सस्ता रांझा, मजूर का वांझा, चन्ना मेरे या पागल प्रेमी, दुखी दर्जी, टूटा दिल शहजादा, जिसका प्यार रह गया आधा, कबीर सिंह, सूखा वर्जिन।
0: Looking ahead, the actress is expected to feature in Stree 3, Bhediya 2, and Eetha.